0: बेटा ले लीजिए
1: एंसिल पैक किन लीजिए जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी ऑफिस प्रतिशत कम कैश फिर तक एंसिल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीजिए कैश फिर तक ले लीजिए
1: एंसिल पैक किन लीजिए शर्त लागू हुई एंसिल नेपाल के लग
0: पिर्र।

0: लेता ले लीजिए
1: एंसल पैक किन लीजिए जलिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीजिए कैश फिर तक ले लीजिए
1: एंसल पैक किन लीजिए सर लागू हुई एंसल नेपाल के लग

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए
1: खुशी को खबर विगत चार दशक देखि बुटवल में निरंतर सेवा दिदै आइरहेको आले डेन्टल अब कपिल वस्तु को चार नंबर जितपुर में यही श्रावण चार गते देखि शुभारंभ भई संचालन में आइरहेको छ।
2: शुभारंभ को अवसर में विशेष छूट थप जानकारी का लागि आले डेन्टल बाढ़गंगा एक जितपुर कपिल वस्तु एड्रेस बैंक नजिकै

0: रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

जाओगी संगई ले जाऊंगी के घर यू जाली माया ले कास्तो यू मन दुधारे पर्योनी मेरे मेरे उनको आखा ले सुन को चुरा तिने दुलाई माया तिमी लाई।

0: Topal Ayasunde Onunsa, Radio and RN 99.1, Sapeka Lanki Sutana.
1: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो चौतारी।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: पैकेटा ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी ओ 20% फन कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिरता ले लीते कैश फिरता ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।